सोकर गुजार देते हैं, 8 साल पढ़ाई करने में, 6 साल आराम करने में, या यूं कहें कि बीमारी में, 7 साल टीवी देखते हुए या हॉलिडे पर, 4 साल खाने में, 5 साल सड़कों पर, घर से काम, काम से फिर वापस घर, तो बचे कितने? करीबन 12 साल। सिर्फ 12 साल, ये ही टाइम, ये ही साल है जिसमें खूब सारी मेहनत करनी है हमें, और अगर ये टाइम भी हाथ से गवा दिया हमने, देन डोंट यू थिंक वी हैव लॉस्ट नियरली एवरीथिंग? वेल, सोच कर देखें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, जिसे शेयर किया मैंने यानी प्रीत ने आपके साथ आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, जब आप और हम कॉलेज पास आउट करते हैं ना, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जॉब ढूंढने का। कई बार हमें एक बहुत बढ़िया जॉब मिल भी जाती है, बट स्टिल एक क्वेश्चन मार्क, सैलरी इतनी कम क्यों? पर ना, एक बात हमेशा याद रखें कि एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर व्हाट यू लर्न इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू अर्न। जो आपने अपने करियर की शुरुआत में सीखना है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप अर्न कितना कर रहे हैं उस टाइम। तो जी, इसलिए एक्सपीरियंस गेन करें, काम को दिल लगा कर सीखें, तो सैलरी ने तो खुद ब खुद पीछे आ जाना है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ
4: जब तक आप ये यकीन नहीं करते कि जौन सा काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टिप है अच्छा ऐसा करें दिल को अपने काम में बसा लें और काम को अपने दिल में फिर देखें रिजल्ट कितना कमाल का होता है मेरे को पता है कि आपने ऐसे तो मानना नहीं है चलो ट्राई कर लें हर्ज भी कोई नहीं है

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: कुछ दिन पहले मैंने पेपर में हमारी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और मैगसे अवार्ड विनर किरण बेदी का एक आर्टिकल पढ़ा जो खास कर पेरेंट्स के लिए था एंड वेरी स्पेशली फॉर द पेरेंट्स ऑफ डॉटर्स, बेटियों के माँ बाप के लिए। उसमें एक बहुत टचिंग सी बात लिखी हुई थी कि जब भी किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो आंखें खोलते ही अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से सबसे एक ही सवाल पूछती है, Am I welcome in the family? क्या मैं आपका गुरूर हूँ या आप पर बोझ हूँ? और ये पेरेंट्स ही हैं जो उसे सहारा दे, उसकी ताकत बन सकते हैं आगे बढ़ने में अच्छी एजुकेशन देकर। किरण बेदी कहती हैं कि वो एक छोटे से शहर अमृतसर से हैं जहाँ जरूरत है उनके अपने पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स की, हजारों लाखों की संख्या में, जो खास कर अपनी बेटियों की एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें और उन्हें समझा पाएं कि किताबें सोने चांदी की ज्वेलरी से बहुत ज्यादा कीमती है, जो उन्हें ऐसी जिंदगी दें कि फिर कोई बेटी ये दोबारा न कह सके कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए।

आज के शो कल्चर ऑफ पंजाब में हमने अपने आसपास के हर पहलू, हर फील्ड को टच करने की कोशिश की, लेकिन एक कोशिश नहीं, वादा करना है हमें अपने आप के साथ कि हम किसी न किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर विल ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस। एक नहीं, हजारों ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें जरूरत है आपके जैसे लोगों की, जिनके पास जरिया है सोसाइटी में चेंज लाने का।

0: ਅਤੇ ਖਾਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ। ਪ੍ਰਿਚਰਡ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ 22 ਚਾਰਲੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੋ,
1: 171 ਪ੍ਰਿਚਰਡ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਨੀਪੈਗ।
0: ਫੋਨ 204-582-3807
1: 204-582-3807।
2: फाइनेंशियल सक्सेस प्लानिंग नाल आउंदा है, ना कि सिर्फ किस्मत नाल। दलजीत कैंथ नूरा फाइनेंशियल तो तुहानू गाइड करदे ने रिटायरमेंट, इन्वेस्टमेंट्स ते टैक्स प्लानिंग विच सिंपल, क्लियर ते रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नाल। बुक करो अपनी कंसल्टेशन आज ही। कॉल 204-979-0786। नूरा फाइनेंशियल, फ्यूचर नू सिक्योर करो आज तो।
3: इत्थे आके बच्चियां नू एक बेहतर जिंदगी देण दा सुपना तां पूरा हुंदा नजर आया है, पर डर भी लगदा है कि किते अपना छोकड़ अपनी माँ बोली नू ना भूल जान।
4: ए डर तेरा ही नहीं, पंजाबों आ वसे हर माँ प्यो दा है। इसलिए सिक्ख्या क्लासेस लेके आया है ऑनलाइन पंजाबी लर्निंग कोर्स, जिस विच तुहाडे बच्चे घर बैठे ही पंजाबी सीख सकते हन। इस कोर्स विच बच्चे अपने परिवारिक रिश्ते ते साडे इतिहास बारे भी जानू हुंदे हन। इस दे नाल बेसिक मैथ्स, मोरल वैल्यूज ते मेंटल एक्सरसाइज भी करवाईयां जांदियां हन। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, फ्री डेमो क्लास। आज ही कॉल करो 204-463-0110।
5: विनीपेग वालों तैयार हो जाओ, गर्जा ब्रोस दी 1115 गेटवे रोड लोकेशन रीओपन हो गई है।
6: नवीन मैनेजमेंट टीम टू स्पेशल रीओपनिंग प्राइसेस दे नाल 1115 गेटवे रोड स्टोर, फ्रेश लुक, फ्रेश टीम ते ओही गर्जा ब्रोस दा डिलीशियस टेस्ट।
5: एंजॉय करो क्रिस्पी फिश पकौड़ा, मैरिनेट चिकन लेग्स एंड थाइस, विंग्स, टिक्का फिश, गोट, लैम्ब, वेज ऑप्शन एंड हेल्दी नॉन फ्राइड ओवन कुक आइटम्स। हर फैमिली हर पार्टी दे लई परफेक्ट।
7: विनीपेग वालों, गर्जा ब्रोस गेटवे ते क्रिस्पी फिश पकौड़ा दी सिर्फ $899 दी स्पेशल प्राइस नू मिस ना कर जाइयो।
6: विजिट गर्चा ब्रोस 1115 गेटवे रोड यूनिट 5 लोकेशन।
5: गर्चा ब्रोस, टेस्ट दैट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर।
8: तुसी सुन रहे हो विनीपेग दा असली रेडियो, रेडियो तमाल।
9: भाई साडा बापू मक्खण सों कहिंदा हुंदा सी, भाई माड़े हाथ लगी चीज बहुते दिन नहीं कढ़दी। सो भाई जे गड्डी जान ना रखी है ता फिर रिपेयर भी ता चंगे था होनी चाहिदी है। अपने ऑटो वर्क्स आलिया ना हरेक मेक ते मॉडल दियां कारां दी तसल्ली बख्श मैकेनिकल रिपेयर करदे, ऑयल चेंज, व्हील अलाइनमेंट, टैक्सी लिमोजिन दी सेफ्टी करदे। भाई बॉडी दा को माड़ा मोटा रिपेयर दा कम एंड डेंटिंग पेंटिंग दा ओ भी हो जू, जे विंडशील्ड रिपेयर करवानी है जां फिर करवानी है रिप्लेस ओ भी चक देणगे। हां नाले जे होर गड्डी लैण दा विचार है फिर यूज्ड कारां वी हुंदियां ना कोले। भाई जाना किथे? अपने 306 स्टैनली स्ट्रीट विनीपैग। याद रखियो सिकंदर नूं फोन कर लियो, ऑटो वर्क्स आले 204-942-4690। भाई 204-942-4690। लब्बे
10: ट्रैवल दा प्लान है, वीजा दी टेंशन है या इंश्योरेंस दी लोड है? ता फिर याद रखो मान इंटरनेशनल ट्रैवल, वीजा असिस्टेंस, अमेजिंग वेकेशन पैकेजेस, डोमेस्टिक ते इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स, ओ भी ग्रेट डील्स नाल ते हर तरह दे इंश्योरेंस कॉम्पिटिटिव रेट्स नाल। 7 कन्वीनियंट ऑफिसेस लोकेशंस ते 24/7 सर्विस, हजारां लोकां दा भरोसा, फास्ट, रिलायबल ते फ्रेंडली सर्विस। आज ही कॉल करो 204-202-0104। याद रखो मान इंटरनेशनल ट्रैवल, योर ट्रस्ट ट्रैवल पार्टनर। वी आर ओपन 24/7 टू सर्व यू।
11: की तुहाडा भी सपना है के अपना घर होवे, ता इको एक नाम याद रखियो, वेंचुरा कस्टम होम्स ते विनमैक्स रियल एस्टेट दे बॉबी सिंह जी दा। इना कोल है 15 साल तो भी ज्यादा दा तजुर्बा। वेस्ट सेंट पॉल, हाईलैंड पॉइंट, रिवर स्प्रिंग, जा शहर दे किसी भी एरिया विच इना दी मदद नाल अपने कस्टम ते मॉडर्न होम बनाओ। बॉबी सिंह होरा कोल इस समय नवे घरां दीयां बहुत सारियां प्रमोशंस हन। कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी होवे, कॉल बॉबी सिंह 204-510-9485 204-510-9485।
12: तुसी सुन रहे हो विनीपैग दा असली रेडियो, रेडियो तमाम,
13: रेडियो तमाम,
12: रेडियो तमाम।

आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही मेरी आवाज, कितने आए तो नहीं गा भी जिधरों माइक लाई दा तो उधरों ही मेरी आवाज आनी होगी। आई डोंट नो मेरी आवाज क्यों नहीं आई आंदी। Yeah, last time तो

अखियां ने हंजुआ दी कीती बरसात सोने दरगाह ते रोन लाया तेरे ये गमाने प्यार प्यार क्या के मैं